स्नेहा मण्डल दक्ष प्राविधिक द्वारा 24 घण्टा परामर्श सहितको फार्मेसी सेवा साथै निशुल्क होम डेलिभरी। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 0625414377 र 98564433। तनहु सेवा हस्पिटल सुकुलागण्डकी नगरपालिका।

0: श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एवं कथा प्रवचन
1: यही असोज 25 गतेदेखि कार्तिक 1 गते सम्म स्थान सिद्धेश्वर शिव पञ्चायत मन्दिर।

0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: अध्यक्ष भानुभक्त पौडेल एवं बाराही लहरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शुक्ला गण्डकी 8 ढोरफिर्दी।
2: अध्यक्ष शिव शंकर बानिया एवं ढोरफिर्दी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 8 परिवार।
3: अध्यक्ष मोती प्रसाद पौडेल एवं साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 8 ढोरफिर्दी परिवार।
2: अध्यक्ष प्रकाश पौडेल एवं चिसापानी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हरिनाश 2 मग्याम चिसापानी स्याङ्जा परिवार।
3: अध्यक्ष रेशमलाल पौडेल एवं सुलभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार शुक्ला गण्डकी।

0: पुर्से ब्याङ्कको आडमा मोबाइल नम्बर 9811975732।
1: प्रोपाइटर सलिम मिया, एरोमा अनम सस्तो कस्मेटिक पसल शुक्ला गण्डकी चार दुले गौडा, मोबाइल 9841659028।
2: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी चार दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी एफएम को पारीपट्टी मोबाइल नंबर 9855309982 र 9705620209।
3: TVS साथ छ हाम्रो।
4: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, शुभचिन्तक तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
5: अध्यक्ष सूर्यदेवी सिग्देल एवं खैरेनटार महिला बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनटार परिवार,
6: अध्यक्ष मिलन पौडेल एवं नेपाल वत्त तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा परिवार,
5: अध्यक्ष मान कुमार तिमला एवं उन्नति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार दुलेगौड़ा, फोन नम्बर 0635414255,
7: अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद भट्टराई एवं नवज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्ला गण्डकी 8 ढोर फिर्दी परिवार।
5: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धिसँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
7: प्रोपाइटर अर्जुन सापकोटा, सापकोटा निर्माण सेवा, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनटार, मोबाइल 9855623420, 9801454674, ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, बोल्डर, माटो, चोकर, प्लास्टर बालुवा, ग्राभेल बालुवा आवश्यक परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्।
5: प्रोपाइटर कुलबहादुर लम्साल, दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, मोबाइल 9855634881।
7: प्रोपाइटर बलराम पाण्डे, पाण्डे लाइट हाउस, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, मोबाइल 9842957704।
6: प्रोपाइटर रामकुमार श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जिप्सन इन्टरप्राइजेस, शुक्ला गण्डकी 2 गाछे पानी, मोबाइल नम्बर 9807677652।
1: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 MHz। हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा यस संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य, टोलवासी, सामाजिक संघ संस्थामा क्रियाशील महानुभाव, बुद्धिजीवी एवं सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। फत्तबहादुर पुन मगर अध्यक्ष एवं पुन मगर समाज गाछेपानी, शुक्ला गण्डकी 4 गाछेपानी परिवार।
1: टीवीएस कंपनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीवीएस कंपनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री, सबै ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग, गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीवीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा, प्राइम बैंक सँगै, शुक्ला गण्डकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 98560309 र 97065620209।
2: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
3: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा समाजका पदाधिकारी, सदस्य, शुभचिन्तक तथा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
0: अध्यक्ष कमल बहादुर आले एवं झुल बहादुर स्मृति प्रतिष्ठान, रिसिङ साप घिरिङथोक परिवार।
4: अध्यक्ष विष्णु बहादुर राणा एवं नेपाल मगर संघ शुक्ला गण्डकी नगर समिति परिवार।
5: अध्यक्ष शिव कुमारी कार्की एवं ढोरेली सेवा समाज काठमाडौँ परिवार।
4: अध्यक्ष धन बहादुर विग एवं शुक्ला गण्डकी स्वरोजगार समिति परिवार।
0: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
6: प्रोप्राइटर सुभाष चन्द्र गिरी, न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेशन, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा भित्री बजार, हेल्प पोस्ट चोक नजिकै। फोन 98560206630।
7: प्रोप्राइटर केशर बहादुर तिमसेना, तिमसेना फेस हाउस, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा। फोन 98560078।
6: प्रोप्राइटर कमल चन्द्र लम्साल, लम्साल होटल एन्ड लज, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा। फोन 98411-95442।
7: प्रोप्राइटर राजेन्द्र पौडेल, सुलभ मोबाइल एन्ड एसेसरिज, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा। फोन 98463-23111।
6: प्रोप्राइटर दिनेश घिमिरे, चण्डिकालिका सुनसादी पसल, शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौड़ा। फोन 98560-62099।
8: होइन हौ, कसरी पर्यो

0: स्पेशल गंदे सॉन्ग या
1: डांस नहीं पागल है क्या
0: क्यों
1: ट्रोल हो जाएंगे हम लोग ट्रोल
0: बट व्हाई इज आइकॉनिक
1: फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं कई को पंगा लेने गए छोड़ दे आजकल जनता ना बहुत
2: पिक्चर्स हो गई इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट आई वाज इट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नाउ यू आर गेटिंग मी
1: यू गाइस वांट ऑडिशन या ट्रोल हो जाएंगे मत करो

0: Yes. Kill it.
1: पागल है क्या? ट्रोल हो जाएंगे. नॉट एट ऑल.
0: डीनू डाल दे. ट्रोल हुए तो हो जाएगी.

0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति शुक्ला गण्डकी आठ नहुँ।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, शुभचिन्तक, शुभेच्छुक आफन्तजनहरू साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सँगै उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: प्रोपाइटर कृष्ण प्रसाद पौडेल, पीके हार्डवेयर तथा जंगल पार्क रिसोर्ट, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। फोन 98 5 60 20 529।
4: प्रोपाइटर भक्त कुमार रामदाम, रामदाम सुनसादी पसल, शुक्ला गण्डकी 7, खैरेनी टार। फोन 98 4 60 78 0 22।
3: शेयर धनी सदस्य एकराज सिगदेल, शुक्ला गण्डकी 8, ढोर फिर्दी।
4: प्रोपाइटर तीर्थराज खनाल, बेस्ट कंक्रीट एन्ड ब्लक उद्योग, शुक्ला गण्डकी 2, कोत्रे। फोन 98 5 60 29 5 99।
3: प्रोपाइटर बिरसना श्रेष्ठ, असीम अस्मी फैंसी स्टोर, शुक्ला गण्डकी 4, दुलेगौंडा। फोन 98 4 61 94 378।
2: हार्दिक शुभकामना। नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्व 2083 र नेपाल सम्बत 1147 पावन अवसरमा ओडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, नगरवासी, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, शुभचिन्तक एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, सुस्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डित, उप प्रमुख खुम्बहादुर विकर राजु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत प्रसाद भूषाल एवं शुक्ला गण्डकी नगरपालिका परिवार।
2: नगर प्रमुख ददिरा सुवेदी, उप प्रमुख शारदा खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोखरेल एवं भीमात नगरपालिका भीमात परिवार।
1: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज।